0: आओ दीपोर का हम लाम सगो
1: माँ कुनो अब ताम खामियां चिमेरे दो कुनो कॉक खनाई बा आराम नंगा कोरंग बो सोपिंग चापंग लारो कॉक सगाई यंग लगो बंग पुमा मस्त वाह गो पाई सेर सासार गेगर गागर सोपिंग चोपिंग कुन सोरोंगो सोसबोंगो सेर सासारोंगो गोर गागरोंगो ताम ताप समालिया
0: Kok sebut ya tam no sanah no. Ah, aw.

अखुनाथ तो रिसामुंग नरखना बाख्या विश्वनाथ देवर्मानी खुक्ते रिसाब जाय रिसामु गाहाम दंदे रिगै दंगो लांगमो सिनि लांगमनो गाहाम खलायनानि थांखे सों बेलाखिनो साइटुंना नांगो वान सुमा हामिया हिबिना नांगो फादि हानो हाय सों गोसरबो देबो खनाथ खनाथ रिसामुंग खनानानि थांलायनाय दाबो खनालायनाय सों विश्व देवी नि खुक्ते रिसाब जाय रिसामुंगो

0: अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: धन्यवाद।